शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। शफक धनक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल, इस दामन में क्या क्या कुछ है, दामन हाथ में आए तो। चाहत के बदले में हम तो बेच दें अपनी मर्जी तक, कोई मिले तो दिल का गाहक, कोई हमें अपनाए तो। सुनी सुनाई बात नहीं ये अपने ऊपर बीती है, फूल निकलते शोलों से चाहत आग लगाए तो। झूठ है सब तारीख हमेशा अपने को दोहराती है, अच्छा मेरा ख्वाबे जवानी थोड़ा सा दोहराए तो। नादानी और मजबूरी में यारो कुछ तो फर्क करो, एक बेबस इंसान।

दिल आ जाए तो देर लगी आने में तुमको शुक्र है, फिर भी आए तो आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो।

0: तू है मेरा नाम, मैं खुसरो की पहेली। दक्कन के वली ने मुझे गोदी में खिलाया।
1: वाह।
0: सौदा के कसीदों ने मेरा हुस्न बढ़ाया।

0: बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह।
1: मेरा नाम तू है, मेरा नाम खुसरों की पहेली, क्यों मुझको बनाते होता सुख का निशाना। मैंने तो कभी खुद को मुसलमान नहीं माना।
0: वाह वाह वाह।

दरवाजे पर दस्तक जारी रही, यहां तक कि मैंने पूछा, कौन? उर्दू। जवाब कदरे अनहोना था। उर्दू कौन? मीर की महबूबा। मैं ठिठक गया। सुर्खी लब से शोखी अदा तक एक एक तस्वीर मेरे दिल से लहरा कर गुजरी। मीर इन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है, उर्दू ने गुनगुना कर कहा। मैंने सोचा, देखूं तो वो कौन है जिसकी मोहब्बत में मीर ने वो रिश्ते कहे कि हम जैसे आज तक गलियों में बैठकर पढ़ते हैं। जैसे ही दरवाजे के पड़वा हुए, जो मंजर था वो पहले से ज्यादा दिल फरेब लगने लगा। मीर ने उन आंखों के बारोब होने का जिक्र तो कभी नहीं किया था, और ये लिबास मलगजा सही मगर मोहसिन नकवी की जबान में सर्दी में खिजा के चांद जैसा था। मैंने एक नजर मुड़कर अपने कमरे की जानिब देखा। मेडिसिन की अनगिनत किताबों, कॉफी के दो इस्तेमाल शुदा मग और दो चार फलसफे की किताबों के दरमियान इन्हें कहाँ बिठाऊं? लेकिन उर्दू को इन मामलात से कोई वास्ता न था। वो जैसे आई, धड़ल्ले से उन सब के दरमियान बैठ गई। रात भर की जागी लगती थी। जो करीब से देखा तो लगा मीर ने जो कुछ कहा कम कहा, अभी और भी बहुत कुछ कहा जा सकता था। जानते हो मीर क्या कहता था? मैंने नफी में सर हिला दिया। वो कहता था, जुबान शनास तो हर कोई होता है, लेकिन उर्दू शनास कोई कोई होता है। बात हस्ब तौफीक समझ आई, बाकी कदर ऊपर से गुजर गई। मैंने तुम्हारा मजमून पढ़ा, तुमने लिखा है शायद उर्दू जुबान का कोई मुस्तकबिल नहीं, ये जुबान अपना वजूद खो रही है। भला मुझे गौर से देखो, तुम्हें अब भी यही लगता है? मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ, फिर दावत पाकर सोचा कम अज कम हुलिया तो जांच लूं। सब्ज चादर जो शुरू में कदरे नई लग रही थी, मालूम हुआ किसी कदर पैवन ज़दा है। चेहरे पर कहीं कहीं बुजुर्गी के आसार नमूदार हो रहे थे। बालों में इक्का दुक्का झलक चांदी की भी थी। सियाह लिबास में भी पैवंद थे। मेरे अंदर का लिखारी खुश हुआ कि चलो बदहालिये उर्दू का जिक्र किया, सच ही कहा। मैंने जोम से उर्दू की आंखों में देखा, मगर उर्दू की आंखों में वो जाहो जलाल था कि मैं कुछ कह ही नहीं सका। मेरी नजर उर्दू के कंधे से होती हुई मेडिसिन की किताब पर जा ठहरी। मैं जानती हूं तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है, तो साबित हुआ उर्दू बारोब होने के साथ साथ जहीन भी थी। मुझे अपने लिखे एक एक लफ्ज पर शर्मिंदगी होने लगी। उर्दू के वजूद में बदहाली का वो शायबा तक न था जिसका नक्शा मैंने खींच रखा था। चलो छोड़ो, बस वो सुन लो जो मैं इतनी सदियां दूर से तुम्हें कहने आई हूं और रसानिया से कहने लगी। तुम जानते हो जुबान का वजूद किसी बाजगश्त का मोहताज नहीं होता, किसी दूसरी या तीसरी जुबान में लिखे गए बदहाली के नक्शे का भी नहीं। जुबान को जिंदा रखने के लिए बस एक मीर गालिब या फैज की जरूरत होती है। तख्लीक एक मंजिल है तो इर्तिका दूसरी और आहयात तीसरी। मैं जानती हूं पहली दो मनाजिल मैं अरसा पहले गुजार चुकी हूं। वो कहते कहते रुक गई, गोया जांच रही हो कि मुझे समझ आ भी रहा है या नहीं। मैंने इस बात में सर हिलाया तो कहने लगी, लेकिन मेरा आहया रोज होता है। जब भी एक मासूम बच्चा उर्दू की पहली किताब पढ़ता है, बार बार लिखता है, मैं तब तब जिंदा होती हूँ। जब जब एक लिखारी सफा फाड़ता और नई तहरीर शुरू करता है, वो मेरी रूह मुझे वापस लौटाता है। बस फर्क सिर्फ यह है कि इस दौर के मीर और गालिब जमाने की गर्द निगाहों से अभी ओझल हैं। बातें सुनते सुनते मेरी नजरें उसके दामन में पड़े सुराख पर जमकर रह गईं। उसे उस जगह पैवंद की सख्त जरूरत थी। मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हें सख्त क्या सोच रहे हो। मैं चौंक गया, डरते डरते नजरें मिलाईं तो लगा किसी जहानुमा में अपना अक्स देख रहा हूं। वो जो चार छह नज़में और दो तीन अफसाने तुमने अपनी मेडिसिन की किताबों में छुपा रखे हैं, अगर वो छपवा लो तो मेरे दामन में पैवंद लग जाएगा। न जाने क्यों मुझे लगा इस बार उर्दू के लहजे में रोब के बजाय नमी सी थी।

वो चली गई तो मैं देर तक लेटा सोचता रहा। मीर ने जो कुछ कहा कम कहा, अभी और भी बहुत कुछ कहा जा सकता था। ये तहरीर थी तैयबा मुमताज की।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एहसन खान। आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने इंतहाई अच्छे मेजबान आबिद अली बेग के साथ। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए।

मत खाओ। हमने कहा जी अच्छा। चंद दिन में इस इलाज से हमारा जी भर गया और डॉक्टर साहब की जेब। अब एक और मेहरबान मिले, वो हमें एक आमिल कामिल के पास ले गए। उन्होंने चांद की 14वीं रात को उल्लू के घोंसले से बीट लाने को कहा और एक जिंदा सांड हमारी जेब में डालने की कोशिश की, क्योंकि आयुर्वेदिक इलाज भी करते थे। हम वहां से चल दिए। मालूम हुआ कि एक साहब पानी से इलाज करते हैं, हिंदी में इसे जल चकस्ता कहते हैं। बहुत सादा इलाज है। मरीज को गर्दन से पकड़कर 7 मिनट तक तालाब में गोता दिया जाता है और मर्द रफा हो जाता है, अगर इस गोते से मरीज जिंदा बरामद हो तो। हम मौत से नहीं डरते लेकिन पानी से डरते हैं, लिहाजा इससे भी किनारा किया। बोले अच्छा इलाज मत करवाओ, परहेज सुनते जाओ, फीकी चीज कोई ना खाना, वो तुम्हारे लिए मुजर रहेगी। दाल मना और गोश्त मना और सब्जी तो बिल्कुल ही मना। अपनी बीमारी की हिकायत को हम मुख्तसर करते, होम्योपैथी करते, लेकिन मीठा मना था, खट्टा भी मना था, नमक मिर्च भी हमारे लिए मुजर पाए गए, हत्ता कि फीकी चीजों की भी ममानियत हो गई। अब सिर्फ पीने को पानी और खाने को हवा रह गई थी। ये हाल देखा तो हम में बीमारी की ताब ना रही, नाचार तंदुरुस्त हो गए। मरता क्या ना करता। हकीम और डॉक्टर कुछ भी कहें, हमारे नाकिस राय में इलाज परहेज से बेहतर है। अक्सर औकात इलाज पर कम और परहेज पर खर्च भी ज्यादा आता है। कभी आपने सोचा कि लोग परहेज करने लगे तो इसके कितने होलनाक नतीज बरामद हों? न डॉक्टर, न हकीम, न वैद, न आमिल कामिल, न अस्पताल, न मतब, न चीन हेल्थ सेंटर, न इंडोनेशिया दवाखाने, न फकीर की चुटकी, न जोगी का अतिया, न दवा साज कंपनियां, न जोशांदे खिजांदे, न न्योले, न सांप, न सांडे, न चिपकलियां। इस वक्त दुनिया की आबादी को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक बीमार, एक मुआलिज। एक छोटी सी अकलियत तंदुरुस्तों की भी है लेकिन वो चंदा काबिल लिहाज नहीं। अगर आधी आबादी परहेज की बदौलत भूखो मरती है, मालिज और दवासाज वगैरह, तो कौन सी मुल्क और कौम की खिदमत हुई? ये हो तो मेडिकल साइंस कैसे तरक्की करे? ना साहिब ना। क्या आप मुलाजमत की तलाश में हैं और सोच रहे हैं कि आपको रोजगार से मुतालिक रहनुमाई या मदद कहाँ से मिल सकती है? लेबर डिपार्टमेंट पूरे शहर में 10 जॉब सेंटर्स चलाता है, जहाँ मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को बिल्कुल मुफ्त खिदमत फराहम की जाती हैं। आप किसी भी जॉब सेंटर में ताज़ा तरीन खाली आसामियों की मालूमात हासिल कर सकते हैं। अब हम मौजूद एम्प्लॉयमेंट एडवाइज़र से मुलाकात करके अपनी रोज़गार की ज़रूरियात पर बातचीत भी कर सकते हैं और ऐसे खसूसी रोज़गार प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं जो आपकी मुलाजमत हासिल करने की सलाहियत को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। खसूसी तौर पर आप रेशियल डाइवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं, जिसके तहत नस्ली अकलियतों से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद को रजिस्टर्ड सोशल वर्कर के जरिए केस मैनेजमेंट के अंदाज में एक ही जगह तमाम रोजगार मावन खिदमत फराहम की जाती हैं। लेबर डिपार्टमेंट अंग्रेजी और चीनी जबान में खिदमत फराहम करता है। अगर आप अंग्रेजी या चीनी नहीं बोलते तो महकमा आपके लिए मुफ्त तर्जुमान की सहूलत का इंतजाम भी कर सकता है। मजीद मालूमात के लिए लेबर डिपार्टमेंट की इंटरेक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस की वेबसाइट पर नस्ली अकलियतों के लिए मखसूस सफ़ा मुलाहिज़ा करें www.jobs.gov.hk/em या इंटरेक्टिव एम्प्लॉयमेंट सर्विस मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। छाती का कैंसर हांगकांग में खवातीन में सबसे आम कैंसर है। हर औरत को अपनी छातियों की आम शक्ल सूरत से वाकिफ होना चाहिए और हर वक्त छाती से आगाह रहना चाहिए। रोजाना की सरगर्मियों के दौरान में छाती की किसी भी गैर मामूली तब्दीली से चौकन्ना रहें, जैसे छाती की गुठली, छाती के साइज या शक्ल में तब्दीली, निबल का हट जाना या जिल्द की साख्त में तब्दीली। अगर आपको कोई गैर मामूली तब्दीली नजर आती है तो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें। छाती के कैंसर का जल्द पता लगाना आपकी जिंदगी बचा सकता है। छाती के कैंसर से बचने के लिए आप सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपना सकते हैं, जैसे कि बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी, सेहतमंद जिस्मानी वजन और कमर के नाप को बरकरार रखना और शराब नोशी से परहेज करना। मजीद मालूमात के लिए देखिए www.cancer.gov.hk/breastcancer। प्रोग्राम के आखिर में एक गीत जिसे गाया है आतिफ असलम ने। हांगकांग की शाम की आज की ये महफिल अपने इख्तिताम को पहुंची, जिसे पेश करने में तावुन किया होम अफेयर्स डिपार्टमेंट हांगकांग ने।
ہماری نشریات انٹرنیٹ پر لائیو یا گزشتہ ایک برس کے